माधोजी। सत्संगत मिले सो तरिया, सत्संगत मिले सो तरिया, साध संगत हुई निर्मला। एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत,

संगत विच आ जाना बैकुंठ धाम दे दर्शन ने, बैकुंठ धाम दी प्राप्ति है। कईयां दा कहना है कि बैकुंठ धाम मरण तो बाद मिलता, पर बाणी आखदी नहीं बैकुंठ धाम ते जीवदिया ही मिल सकता है। जीव जे तू संगत विच आ जाए ये बैकुंठ धाम है। ये सच खंड दे दर्शन ने, क्यों? सच खंड वसै निरंकार, जिथे निरंकार वसदा है, हरी कीर्तन है, साध संग जुड़ के बह गई है ना, ओही सच खंड है, ओही बैकुंठ धाम है। मैं ते नहीं कहिंदा, बाणी कह रही, ते बाणी ते चलण वाले नू बैकुंठ धाम दे दर्शन हुंदे ने, ओ बैकुंठ धाम दा वासी बन जांदा है।

की पवित्र बाणी साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी की उच्चारण कीती हुई है। गुण गोविंद कायो नहीं जन्म आकारत की, कहो नानक हर पज मना जय विद जल को मीन। इन्हां सारियां सलोकां विच श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज सानू एक सुनेहा देना चाहते।

मूर्ख लोग अजान, कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान। मूर्ख बंदा माया दी खातर दिन रात नठिया फिरदा है, बई तू संगत विच नहीं आंदा जी, मेरा कारोबार इन्ना है मेरे कोल टाइम ही नहीं होता, मेरा काम इन्ना है। ओए पलिया, जदों भुख नाल मरदा सी उदों तेनू गुरु चेते सी, उदों ते दोनों वक्त गुरु घर आके अरदासां करदा सी। हुण तेरा कारोबार वध गया, दात प्यारी विसरिया दतारा, देण वाला भुल गया, हुण तेरे कोल गुरु लई टाइम ही नहीं हुंदा। सतगुरु बाणी विच समझांदे ने, माया कारण ता भी मूर्ख लोग अजान, यह मूर्खां दा काम है। सुख आंदियां भी देर नहीं लगती, जांदियां भी देर नहीं लगती। जे तेनू गुरु ने धन दिता है, कारोबार बढ़ा दिता है, सगों होर गुरु का धन्यवाद कर। क्यों अपना जीवन बिगाड़ रहा है? एक बार श्री रामचंद्र जी दरबार में बैठे सन, की तक रहे ने, एक कीड़ा दीवार ते चढ़ता है फिर थले डिग जाता है, इहदे वल देखी जाते ने, दीवार ते चढ़ता है फिर नीचे गिर जाता है। रामचंद्र जी इहदे वल तकी जाते ने ते फिर देख के ना हसन लग पे। कोल ऋषि मुनि बैठे सन, आखन लगे ऐ की गल है, क्यों हसदे हो? आ देखो बई, कीड़ा दीवार ते चढ़दा है डिग जांदा है, बई इहदे विच हसण वाली केड़ी गल है? ये ते हसण वाली कोई गल नहीं। श्री रामचंद्र जी आखन लगे, हसण वाली गल यह है, इस जीवन तो पहला ना ए एक राजा होंदा सी, दुनिया ते इहदा राज सी, बड़ा बड़ा राजा सी, इंद्र जिसदा नाम सी। इने सिमरन नहीं कीता, दिन रात पाप कीते, ते हुण ए 84 लख जून दे विच पिया होया है, कीड़े दी जूनी विच पिया है। ते मैं हसदा ता हां, ऐ पलिया तेनू धन भी दिता, सोने महल भी दिते, घोड़े गड्डियां भी दिते, तू निरंकार नू फिर भी चेते नहीं रखिया, ते हुण देख ला किहड़े दुखां विच फसिया होया। जे साडे कोल सुख चंगे ने ना, ते प्रभु नू भुलाणा नहीं चाहीदा, सगों ज्यादा धन्यवाद करना चाहीदा है। नहीं ते जिहड़ा आण वाला जीवन है ना, दुनिया विच ते दुख पाना ही पाना है। जिहड़े सिमरन नहीं करदे, दुनिया विच भी दुख पांदे ने, घर दे कलेशां दे विच लड़ाइयां झगड़ियां विच फसे रहिंदे ने, ते जिहड़ा अगला जीवन हुंदा है ओह भी खराब कर लैंदे ने, 84 लख जून दे गेड़ विच फस जांदे ने। नहीं बई, जे तेनू मालक ने सुख दिते ने ना, इन्हां सुखां दा आनंद भी माण, ते गुरु नू भी चित रख। गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे, नीत नीत घर बांधिए जे रहना होई, बहुता कुछ उत्थे बनाई दा है जिथे पक्के रहना होवे, इत्थे तो पक्के नहीं रहना, एक ना एक दिन चला जाना है। जात मार रिश्तेदारां वल, दोस्तां मित्रां वल, पिंड नगर वल किन्नी चले गए ने, ते तू किन्ना चिर बैठा रहेगा? फरीदा, किथे तेंडे मापिया, भई किथे ने तेरे मापे जिन्हां ने तेनू जन्म दिता सी? वो तेरे तो लद गए ने, चले गए ने, इसे तरह एक ना एक दिन तू भी चले जाना है। जो सुख को चाहे सदा,
ਸ਼ਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੇਹੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਦੁਰਲਭ ਮਾਨੁਖ ਦੇ, ਜੇ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵਾਦ ਸਫਲੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇਗਾ ਫਿਰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ 9ਵੇਂ ਮਹਿਲੇ ਦੇ ਸਲੋਕ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਜਾਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰ। ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰ। ਬੈਠਿਆ ਕਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਸ ਸਫਲੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਨੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਜਨਮ ਵਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਆਖ

फिर पटके रहने तेना दुख न भुख तिनर निधन नू कही। उस इंसान नू उस नर नू कोई दुख ते भुख वापर नहीं सकदा, वो निर्धन नहीं रह सकदा, वो निर्धन नहीं रह सकदा। तिनर शोक न हुए तिनर से अंत न लईए, उथे शोक नहीं हो सकदा उसने। तिनर से अंत न लईए तिनर सेव न करे, वो किसी का गुलाम भी नहीं होगा। तिनर सह सहज समपे, वो गुलाम भी किसी का नहीं होगा, ते हर एक विच उनू वेखूगा। सहज समपे तिनर दुलीचे बह है, दुलीचे का अर्थ है दुलीचे का गलीचे, उसका स्टैंडर्ड एडा उच्चा हो जाऊगा, गलीचे विषय होंगे। तिनर दुलीचे बह है तिनर उथप विथप है, उहदे विच इन्नी शक्ति आ जाऊगी वो राज खो भी सकूगा तो राज दे भी सकूगा, उखड़िया होया नू बसा भी सकूगा। तिनर दुलीचे बह है तिनर उथप विथप है, सुख लह है तिनर संसार में, इस संसार विच ये सारे सुख उन्हों मिलन। अप है पट रिप मध ते सक्यथ तिनर जालप बने, किनू ये सुख मिलनगे किनू ये वड्याइया मिलनगिया। गुरु अमरदास सुख प्रसन्न जे जिदे ते तीजा गुरु नानक गुरु अमरदास महाराज जिदे ते प्रसन्न हो जाणगे, ये सारे सुख ये सारी

प्यारा लिखा है चित चरण कमल का आसरा चित चरण कमल संग जोड़ी है बाही जना की पकड़ी है सिर की जय बाही ना छोटी है असि जकारा बुलावे सारे उच्ची वाह करनी है सच्चे पातशाह साड़ी वाह।

गुरमुख जापे जप मन हर हर नाम रस ध्रापे अमृत नाम महारस मीठा गुर शब्दी चख जापे आपे तीरथ तुलहड़ा प्यारा आप तरे प्रभ आपे आपे जालो ली हर आपे आप अभुल न भुलई प्यारा दूजा अवर न जापे

आपे धरती आप है राहक आप जमाए पिसावे आप पकावे आप भांडे दे परोसे आपे ही बैखावे आपे जल आपे दे छिंगा आपे चुली भरावे आपे संगत

कहूं पवन है के बहे बेग ऐसे कहे मोन आवे कथो ताह कैसे कहूं नाद है के भली भांत बाजे कहूं पारधी है धरे बान राजे।

कतहु सुचेत होय के चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो, कतहु भिखारी होय के मांग तू फिर तू भीख, कहु महादान होय के मांगो धन देत हो, कहु

कहूं देव बानी कहूं सारधा भवानी कहूं मंगला मेड़ानी कहूं श्याम कहूं सेत हो।

राग गौड़ी भी सोरठ भी विच दोवें ऋषभ दोवें मध्यम दोवें निषाद अते दोवें धैवत सुर लगते हैं। इस दे अवरोह विच गंधार सुर वर्जित है। इस दी जाति संपूर्ण षाड़व वादी पंचम संवादी षड़ज अते समा रात दा पहला पैर है। इस राग विच अब मोको भय राजा राम सहाई शब्द दा कीर्तन कर रहे हन भाई अवतार सिंह।

साहब जी कहन लगे भाई दुनिया नु कहना है कि मैनू तिना लोकां दी सोझी है क्यों झूठ बोलना है अखी ता मीटे नाक पकड़े अखां बंद करके समाधि ला के लोकां नू धोखा देना है ठगण को संसार सिर्फ लोकां नू ठगण वास्ते जद के तेनू ए पता नहीं तेरी संदूकड़ी किथे है ते गुरु साहब ने कहा जो अपनी बाणी विच बयान कीता है साहब जी उस जोगी राज नू की समझांदे ने।

पाछे कछू ना सूझे। तेनू अपने पिछे दा ते पता नहीं, संदूकड़ी ता तेरे पिछे पई होई है। पिछा देखिया इस जोगी ने ते सचमुच संदूकड़ी एदे पिछे पई सी। शर्मिंदा हो गए ते गुरु साहब ने कहा, भाई दुनिया नु क्यों धोखा देना है, अपने पिछे पई तेनू संदूकड़ी दा पता नहीं ते दुनिया नु कहना है।

कुरान भी पढ़े, कुरान भी पढ़ी, वेदां दा अभ्यास भी कीता, पर बिन नाम हर के मुक्त नहीं कहे नानक दास। उस परमेश्वर दा नाम जदों तक तुसी मन करके नहीं जपोगे भाई तुहानू किसे नू भी मुक्ति नहीं प्राप्त होनी। एक गल

भगत कबीर साहब दा है। एक सेठ बनारस तीर्थ यात्रा वास्ते गया, तीन कुटिया बनिया सन, उन्हां कुटिया दे कोल गया, एक कुटिया दे विचों आवाज आई, नारायण ए बड़ा खुश होया, क्योंकि नारायण परमेश्वर नूं कहा जांदा। दूसरी कुटिया विचों आवाज आई, दामोदर, दामोदर भी भगवान का एक नाम है। तीसरी कुटिया विचों आवाज आई, बिंद्रावन, ते बिंद्रावन कृष्ण भगवान जिस जगह खेडे, ए सेठ बड़ा खुश होया। उन्हां तिन्हां कुटियां दे विचों एक एक साधु बाहर निकले, जिन्हां चिट्टियां धोतियां बनियां ने, गलां विच माला, हाथ विच माला, ते एक हाथ विच चिट्टा लिशकदा होया लोटा फड़े। ए तुरदे तुरदे इस सेठ दे कोल आए ने। इस सेठ नूं गल्ली बाती जंगल विच लै गए ने। उत्थे जाके इन्हां तिन्हां साधुआं ने जो कुछ सेठ दे कोल सी ओह खोलिया। इस सेठ नूं जानू मारन लगे ने, पर किसी तरह ए सेठ अपनी जान बचा के जंगल विचों भज निकलिया, ते कबीर साहब दे घर चला गया। एदे पाटे कपड़े देखे, ते कबीर साहब कहन लगे, भाई की गल है, तेरा बहुत बुरा हाल है, तेरे कपड़े पाटे नहीं। कहन लगा कबीर साहब, मैनू तीन साधुआं ने लुट लिया, मैं तां संत समझे, पर उन्हां ने मेरी सारी माया खो ली, मैनू जानू मार देन लगे सन, पर बड़ी मुश्किल अपनी जान बचा के मैं उत्थों भजे। ते कबीर साहब कहन लगे, भाई ओ संत नहीं, पता है ओ कौन ने? कबीर साहब जी अपनी बाणी विच उन्हां बारे बयान कर

गली जिना जप मालिया जिना ने गला विच माला पाईया ने लोटे हाथ नी पग ते हथां दे विच चिटे चमकदे होए लोटे फड़े होए ने।

के भांडे जेड़े ने चंगी तरह मांज मांज के चुल्ले ते रखदे ने। काठी कहंदे ने लकड़ा नूं, जेड़ियां लकड़ां जंगल विचों लियांदे ने, उन्हां लकड़ां नूं गंगा दे पानी नाल धो के फिर सका के बालदे ने। सुचता इन्नी रखदे ने

बसुदा खोद करे दोय चूले के धरती खोद के धरती दे विच चूल्हा बनांदे ने, लकड़ा भी धो के बाल देने, पर उस तरह सारे मानस खावे जे इन्हां दा वस चले ते जिंदे इंसान नू मार के खा जाण।

अपराधी ने मुखों अपरस कहावे पर लोकां दे कोलों अपने आप नूं बड़े वड्डे बड़े उच्चे ते सुच्चे पंडित अखवांदे।

अभिमान दे भरे हुए ए आप ते डुबदे ने सगल कुटुंब डुबावे अपना सारा कुटुंब अपना सारा खानदान ए डूब लेंदे ने।

गंगा किनारे बैठे सन। इन्हां दे सामने एक होर संत बैठा सी समाधि लगा के। कोई धनी आदमी आया, गंगा दे पार जाना सी, बेड़ी दूसरे पासे सी, इस वास्ते इस पेखी संत दे कोल ए धनी आदमी बैठ गया। गल्लां बातां करदा रहा, बेड़ी आई, ओ धनी सेठ जान लगा अपनी माया वाली वांसली उथे भुल गया। उस पेखी संत ने अपना आसन चुकया, ओ माया वाली थैली अपने थले रख के आसन विछाया, चौंकड़ा मार के ते बैठ गया। ते भगत नामदेव जी दूर बैठे सन, उन्होंने देख लिया ओ सेठ दूसरे पासे जाके फिर वापस आया। उस पेखी संत नु पुछिया, संत जी मैं तुहाडे कोल बैठा सी, मेरी माया वाली वांस

मैं पखंड नहीं करदा। उस परमेश्वर दा नाम जपया उदे नाल मिल गया। ऐ भाई तुसी भी मन करके उदा नाम जपो, तुसी भी इना पखंडा

0: जिदे बोलां चो दीना लई आ निकले तनो मनो गरीबां दा
1: तनी होवे
0: जिनू वेख के मौत नू छिड़े कंबा अणखी सूरमा तेग दा तनी होवे करे सिर सरवार ने वतन तो जिदे विच कोई कुदरती
1: तनी होवे
0: साडे अथरू वेख के तड़फ उठे होवे जिसनू दिलों प्यार साडा जेड़ा कौम दी शमा तो जानवारे होवे एहो जिहा
1: जथेदार सादा
0: जथेदार बाबा बुड्ढा सिंह जी दी ललकार सुन के सैकड़े सिंघां दे डोले फर्क उठे अखां विच खून उतर आया अते मस्से रंगण तो गुरु घर दी निरादरी दा बदला लैण वास्ते सिंघां दे सीने विच अग मच उठी। उसे वक्त भाई सुखा सिंह माड़ी कंबोकी वाला अते भाई महताब सिंह पंगू मीरकोटिया उठ खड़े होए। सिंघां शेरां दे हत्थ तलवारां दीआं मुठ्ठां ते चले गए। जथेदार तों गुरु घर दी राखी करन वास्ते आग्या मंगी तां पंथ ने खुशी दे जयकारे छड्डे। गुरु महाराज अगे अरदास कीती तां भाई सुखा सिंह अते भाई महताब सिंह घोड़ियां ते सवार होके जिस तरह अमृतसर साहिब वल नूं जा रहे हन उस समय दे दृश्य नूं आप जी दी सेवा विच हे

मन क्यों डोलदा? मन दे डोलन दा कारण की है? क्योंकि मन दा कोई आसरा नहीं, मन दा कोई सहारा नहीं। सहत उपदेश देंदे एक गल समझ आ रहे ने, सतगुर संग ना ही मन डोल। जे मन नूं ए यकीन हो जाए कि गुरु मेरे नाल है, फिर मन नहीं डोल। फिर मन नूं एक दलासा है, मन नूं एक भरोसा है कि गुरु मेरे नाल है। पढ़ते ते आपां जरूर हां, गुरु मेरे संग सदा है नाले, पर यकीन नहीं करदे, विश्वास नहीं करदे, भरोसा नहीं करदे। जे भरोसा हो जाए तो वाकई मन डोलदा नहीं। पर सतगुरु ने ख्याल दिता है कि मन दे डोलन दे कुछ कारण हैं, कि मन क्यों डोल जाता है। चार कारण कुछ सियाणियां ने गिण के दसी। इस मन नूं डर है चार प्रकार का, जिस कारण ये मन डोल जाता है। वो केड़ा है? पहला सरकार दा, ते दूसरा है समाज दा, तीसरा है रोजी दा, चौथा है मौत दा। ये चार प्रकार दा डर मनिया गया। हुण जे इन्हां तो बच जाए मन नूं, यह निश्चय यकीन हो जाए कि गुरु मेरे नाल है, फिर मन डोलदा नहीं। इन्हां चारां दी गल सतगुरु ने बाणी विच कही है। कि सरकार का डर कैसे